0: मौजूद सामिन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। ये सदाए तुर्की है, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 5 अगस्त बरोज़ बुध है। इस वक्त अंकारा के मकामी वक्त के मुताबिक सपहर के 3, पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक शाम के 5, भारत के वक्त के मुताबिक शाम के 5:30 और बांग्लादेश के वक्त के मुताबिक शाम के 6 बजे हैं।
1: सामिन, अपने नशरियात को शॉर्ट वेव 100 मीटर बैंड 17,580 किलो हर्ट्ज के अलावा 7 3 8 4 FS में हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पर भी सुन सकते हैं।
0: आज हमारे प्रोग्राम में अलग तरतीब खबरें होंगी, उसके बाद सिलसिलेवार प्रोग्राम फ़िलिस्तीन की तारीख और पसे पर्दा कहानियाँ और फीचर पेश किए जाएंगे।
1: हमारे प्रोग्राम हसब मामूल खबरों के खुलासे से अख्ताम पजीर होगा। आज आपके मेज़बान हैं इमरान ओपल
0: और सगीर अहमद।